जब इस प्रभु को भयो जन्म तरा जग आय। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कात सुनाय। कब बाच दोहरा ठाड पहो मैं जोर कर बचन का शरण आय। पंथ चला तब जगत में जाओ तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय। संत अंत लहेंगे मुक्त बल पावेगे भगवंत दोहरा। काल पुरुख की देह मोह कोटक बिसर महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा के तेह राव सास करोर जलेस दोहरा। राम कथा जोग जोग अटाल सब कोई भागत नेत। स्वर्ग बास राग बर करा सगरी पुरी समेत चापई। जो है कथा सुने और गावे दुख पाप तेह निकट न आवे। विष्णु भक्त की फल होई आद ब्याद छवै सकै न कोई। संबत सत्रह सास पचावन हाड़ वादी प्रथम सुख दावन। तै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लहो लेहो सुधारा दोहरा। नेत्र तोंके चरण तार स्तर तीर्थ रंग। श्री भगवत पूरन कियो राघवर कथा प्रसंग दोहरा। साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाए गहे जावते तुमरे तावते को आंख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब वो भेद कह हम एक न जान्यो। श्री आस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तोहे।

दर्शन प्यासे दिन सरात चितवा आनंद ननीत खोल कपट गौर मेलिया नानक हर संग मीत धर्मद ठाड दरबार तुझ बिन सुरत करा को मेरी दर्शन दी जा खोल के वार सो कह टल गौर से अहनस सहज सुभाय दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाय हुआ सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठो सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पात साहो सिर सा दा साहो

0: मागर माछ फहाइया कुंडी जाल बताए।
1: मागर माछ ही पाठ करना थोड़ा जा मागर कस के, मगर माछ का ही अर्थ लगता है मागर माछ फहाइया।

0: मेरे प्रभ पावन से उजले सब मैल परिजै मैला उजलता थीऐ पारस संग पीजै।
1: मैला पाठ ते जमक जरूर लाउणी, मैला उजल कह दिता फिर अर्थ दा अनर्थ होवेगा। मैला उजलता थीऐ, मैला जड़ा है वो तां पवित्र मन्या जावेगा। पारस संग पीजै, गे जे गुरु दी पारस रूपी संगत दे विच पीजेगा जुड़ेगा। मैला उजल कट्ठा कह दिता अर्थ होवेगा। मैला उजलता थी है, इदा उच्चारण करना जिवें ज्ञानी जी ने भी किया है।

0: गुरमुख नाम निरंजन पाइया अफरियो भार अफार टरै
1: अफरियो अफ बोल के रियो सारा पाठ साध संगत जी है कट्ठा ही है ऐड़े नू अगेतर नहीं लाउणा अफरियो जिवें उचारण कीता है पोला पाठ करना कसणा नहीं अफरियो भार अफार टरै।

नाहो ना विछड़ै तिन सच्चै रत्तड़ियाह। मारू महला पहला ना भैणा परजाइया ना से ससुड़ियाह। सच्चा साख ना टुटई गुर मेले सहियाह। बलिहा

संसार सागर जिन उपायो शरण प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधे जम कंकर किछ ना कही मोख मुगत द्वार जाके संत रिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े बिख ना पोहै ताहे रिद्ध सिद्ध नव निद जाके अमृता परवाह आदि अंते मध्य पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मोन जन वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनिक पराछत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान इसनान बल बुद्ध सुध प्राण सर्बस संत जना की रा संत ना की रास बिसर नाही निमख मन ते नानक की अरदास मारू महला पंजवा शस्त्र तीखण काट डार्यो मन न कीनो रोस का

पुल्ला आप अपुल ना कबहु पुल्ला आपे मेहर दया पात दाता ना किसे को बैर आई है जिस बख्से तिस दे वडे आई सबसे दाता तिल ना तमाई भारपुर धार रहया निह केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है क्या साल आही अगमे अपारे साचे सिर जन हार मुरारे जिसनो नदर करे तिस मिल।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

कतई नहीं तन जा ही नहीं सकता। निराकार दे देश ए आकार तन नहीं जा सकता। निरंकार दा देश जेदा कोई आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ए तन नहीं जा सकता। तन ते इत्थे रह जाएगा। निरंकार दे देश साडा मन जा सकता, साडा मन जा सकता। कारण ये मन आया भी सीधा सीधे रूप दे निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहती है तन ते मिट्टी, ये मिट्टी इत्थे रह जाएगी। मन जोत है, ये जोत दे जोत हो सकता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछा। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है। शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करते ने। वक्ती तौर ते सूक्ष्म शरीर का संबंध अस्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने, कुछ दिनों लई, कुछ घंटियां लई, कुछ समय लई। सनातन जग दे महान जगत गुरु शंकराचार्य एक महीने अपने शरीर चो निकल गए। इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर जिन्हों जोत कहिंदे ने, मन कहिंदे ने, कढ दिता। चेलियां नूं कहा इस शरीर की रक्षा करने, मैं एक महीने बाद आवांगा। पिछोकड़ सारी गाथा ना सुनावा। ये राम राय भी कर लेंदे सन, धन गुरु हर राय साहब जी दे साहिबजादे। अपनी पत्नी नूं कहा मैं 7 दिन बाद आवांगा, मैं होर मंडलां दे जाना। मेरी देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें। राम राय मसंदा नू मौका मिल गया, राम राय दी देही नू अगला देईए ते आपां खुद गुरु बने। ए विचकार रोड़ है, इनू हटाओ। अर्थी सजा ली, अर्थी कढ़न लगे। राम राय दी पत्नी जारो जार रोंदी है, दुष्टो एक हफ्ता तो उड़ीक करो, अज ते 3 दिन हुए। मैनू कह गए ने 7 दिन बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ना, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता, मसंदा दी ताकत लै गए शमशान घाट, अग ला दिती, अद्धा शरीर जल गया। राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया। पर पिंजरा जल चुकिया सी, घर जल चुकिया सी, घर रहण दे लायक नहीं रहा सी। फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर दे प्रवेश करन दी पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर नूं नहीं साड़दी, पानी नहीं डोबदा। उस शरीर दे प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज दे बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनू जिंदा साड़िया, गुरु थानू जिंदा साड़ेगा। तुसी मैनू जिंदा जला दिता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां सारिआं ही मसंदां नूं देहरादून विच जिंदा जलाया गया। इस तरह दी अनेकां घटनावां ने। आपां जितने बैठे ने इतने सतसंग विच सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते ओ सिद्ध पुरुष जो इस अस्थूल देही दे किधरे भी होन, कि किसे सत्संग नूं मन भावदा ओ देख लैन दूरों, ते इस शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कढ लैंदे ने, पहुंच जांदे। प्रथम। दूसरा,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

संत शरण जो जन परै सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत के दुखना यार जा कटाए, संत के दुखना जानते नहीं छुटाए। संत के सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतराए। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प जौन पाए, संत के दुखन त्रिगत जौन करमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जलै, संत के दुखन सब कुछ हलै। संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए। संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे तो ए भीगत पाहे। संत का नंदक महातताई, संत का नंदक खंडक न पाई। संत का नंदक महात्यारा, संत का नंदक परमेश्वर मारा। संत का नंदक राज तहीन, संत का नंदक दुखियार दीन। संत का नंदक सर्व रोग, संत का नंदक शराब जोग। संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत भावित उसका पी हो मोख। संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लाग है, संत के दुखी को सब त्याग है। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन्म मरे, संत के दुख न सुख ते टारे। संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावित लय मिलाए। संत का दुखी यद बीत टूटा, संत का दुखी कित काज न पहुंचै। संत का दुखी कौ ध्यान भरमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा। संत का दुखी की जड़ किश नाहे, अपन भी जप ही खाए। संत का दुखी कवरन राखण हार, नानक संत भावित लय उबार। संत का दुखी यों बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाव कींदा नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे केला, जम बुआर तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। कीर्तन दे कातर ही पया, नानक जो तिस भावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पूजे नासा, संत का दुखी उठ चले निरासा। संत के दुख न त्रिष्टा कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटा कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसकियो करने हार, सला सला तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास ग्रास। सब कछ वरत तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तसे अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से सलोक। तज हो सियानप सुर जन हो।

जाए अष्टपदी। मन की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसका दिए रहे अगाए, बहुर न तृष्णा लग आए, मारे रख है को आप, मानुक सुनाई हाथ, तिसका हुकम भू सुख होए, तिसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लग कोए, उस्तत मन में है कर निरंकार, करमन मेरे सद व्यवहार, मल रसना अमृत पियो, सरा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सार संग बिन से सब संग, चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सरवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड भागी माहे, सरासरा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सरासरा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, त्योत कियो सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक ते निरंजन जाने, गुर प्रसाद अपने आप सूझै, तिसकी जानो तृष्णा बूझै, सार संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्योहार जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागै दुख, जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डराए, जैसा सात ऐसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सिजिया, गुर प्रसाद तर सब बुझिया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न कि जन्म न किश मरे, अपन चलता आप ही कराए, आवन जावन दृष्टि अनदृष्टि, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मह आप, अनक जुगतराय थाप उथाप, अविनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड, अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाय ते नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरत नमंत, प्रभ के सेवक सगले उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे में लय कृपाल, गुर का शब्द जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख का उत्तम करमान, जो कुछ करे सो प्रभ के रंग, सरा सरा बसे हर संग, सहे सुभाए होवे सो होए, करने हर पछाणे सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा साता सा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओ सुख निधान उन्हों मन आए, आप

अष्टपदी टूटी गण हार गोपाल, सर्ब जिया पे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिससे व्यर्था कोई ना है। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रव्यापे आप। आपन किया कछु न होए, जैसो प्राणी लोचा कोए। जिसमें नाही तेरे किस काम, गत नानक जापे कर नाम। रूपवंत हुए नाही मोह है, प्रभु की जो सगल घड़ सो है। धनवंता हुए क्या को गर्भ है, जा सबके तिसका दिया दर्भ है। हत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता है। जे को होए बह दातार, तिस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद उठे हो रोग, नानक सो जन रोग। ज्यो मंदर को थामे थम्मण, त्यों गुर का शब्द मन है अस्थम्मण। ज्यो पाखाण नाव चढ़त रहे, प्राणी गुर चल लगत निस्तराय। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो माह उद्याण में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे। तिन संतन की बाचो तुहूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल लाइए, प्रभु लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभु दे बनहार, अवर त्याग तूत सहज तार। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे प्रे अजान। कौन बसते आई तेरे संग, लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पर सेती घर जाहे। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ताजब मान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे महतोल। लाल खेव संत संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कहे सब कोय, मुख उजल हर दरगह सोए। एहो वापार विरला वापार, नानक ताके सद बलहार। चरण सार के तोए तोए पियो, अर्प सार को अपना जियो। साधकी धूर करो इशनान, साधु पर जाइए कुर्बान। सार सेवा वड भागी पाइए, सार संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिगन ते साधु राख, हर गुण गाय अमृत रस चाख। ओट गही संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, प्रभु लखे का लेना पाहे। सबके तिसका हो करने जोग, तिसमें दूसर हो अन होग। जाप जान सदा सदा दिन रहनी, सबति ऊच निर्मल करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जाके हृदय को होए। सच करने सहायता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्ते साचा पा।

जसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी। अविनाशी ब्रह्मन में राख, मानुख की तो प्रीति त्याग। तिस्ते परे नाहीं किस कोय, सर्वनंतरे को सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गही सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शांद। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक के मन हवन राओ। मनसा पूर्ण सलना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जा का नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। अन ध्रुव मंगल सर जाके, सर्व थोक सुनिए घर ताक। राज मह राज, जोग मह जोगी। तप मह तपीसर, गृहस्थ मह भोगी। त्याय त्याय भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला कीमत नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता के जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावे से। त्यो गुण में जाको परमाए, जन मरे फिर आवे जाए। ऊ नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे करंग। नाना बिरकिनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एक अंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूरह पूर्ण सब ठाए। नाना मिद करबन तबनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घर तिसके, सब तिसके ठाओ। जप जप जीवे नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगले आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरसन श्रवण। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत्य स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख समाए समाणी। सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत जन जाकर दे प्रवेश। सत निरत बुझे जे कोय, नाम जपता की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपने मित गत। जिसके श्रेष्ठ सो करने हार, अवर न बूझ करत बिचार। करते की मित न जाने किया, नानक जोत सभावे सो वरतिया। बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझिया तिशाया स्वाद। प्रभ के रंग राजन रहे, गुर के वचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटनहार, जाके संग तरे संसार। जन का सेवक सोवड़ भागी, जन के संग इकली विलागी।

सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जा संता भोजन हार कौ सर सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जन मानिया करन करावण तिन मूल पछानिया जाकर दे विश्वास प्रभाया तत गया तिस मन प्रगटाया भय ते निरपो होए बसाना जिसते उपजत समाए समाना बस्त महेले बस्त गदाई ताको भिन्न कहना जाई बुझह बुझन हार विवेक नारायण मिल नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सला पुजारी ठाकुर का सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर का सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक प्रपालन हारा सेवक की रख निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु धार नानक सो सेवक सास सास मार अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत मित कोई न लाख है प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया कीरी मैं कर रख है भस्म करे लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काटते आप ताको रख देकर हाथ मानस जतन करत भात तिसके करत बिरथे जात मारे न राख है अवर न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ लख वडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिया पी अमृत हमन तंत्र पिया नाम रतन जन गुरमुख पाया तिसके शवर नाही दृष्टाया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम रास जो जंत्र बताने मनता नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम बोलो जस जे वदन रात प्रभु अपने जन किन्नी दात करे भगत आत्म कचाए प्रभु अपने सुर समाए जो हुआ होवर सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे कण जानो आठ पैर प्रभ से हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्शा पा मिटावे अवर स्यानप सगले शाड तिस जन की तो सेवा लाग।

अष्टपदी सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरै गुर वचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख बंधन कट है गुर का सिख बिकार ते हट है सतगुर सिख नाम धन दे गुर का सिख वडभागी है सतगुर सिख हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख जी नाल समार है गुर का गृह सेवक जो रह गुर की आग्या मन में सह आपस कहो कर कछ न जिन आवै हर हर नाम हृदय सत्य आवै मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्व गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्वनिधान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जान जन मह पार ब्रह्म एक है अपने गश परम सह सियानप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बडभागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर वचन करने आगाने मन संतोख आत्म पति याने पूरा गोरे अखे हो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावित सलय मिलाए जेह बाएक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण बवेक काहु बोल पहुंचत प्राणी अगाम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहा निरवै सुखदाई ताकि कीमत किन्ना पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरह सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हरस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम दुख तहते नासे तपत माए ठाड़ वरताई अनंद भया दुख नाठे पाई जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चुका निरपौ है बसे सगल भी अरमन ते खै नसे जिसका साथ इन कृपा धारी सार संग जप नाम रारी थित के भ्रम गवन सो नानक हर हर जसरवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाई अपनी कीमत आपे पाई हर बिन दो जाना ही कोय सर्वनंतरे को सोए ओत पोत रवि रूप रंग भय प्रगा सार के संग राचे रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाल बिन भजना

विचार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समित विसार हो चरण कमल रिद में और तारो करण कारण सो प्रभ समरथ दिलका गह नाम हरवथ एहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रख मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन कहो चार कुंठ उठतावै सो तन हर सेवा ते पाव है जिसो को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिसो बा को करे भले सासो बा पज हर की सरनी तन के उपावी रोग न जाए रोग मिटे हरि अवखत लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबुद्ध हो अरकै नाए दस दिस धावत आ बैठाए ताको बिघन लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ही ठांडा हर नाओ सिमर सिम सला सुख पाओ पाओ बिनसै पूर्ण हो आस भगत पाए आत्म प्रकाश चित घर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत् विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आव त्याग शरण गुरुदेव इहो रतन जन्म कहो उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनके उपावना छूटन हारे सिमर सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मनशत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तुम कल पटावह मूर्ख मना सुत मेद कुटा बेर बनता इनते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्थार इनते कहो कमन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहडूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आप जप हो ब्रह नाम जपावहो सुनत कह त्रैत गत पावहो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाय नानक गुण गाओ गुण गाव त्रि उत्तर समैल बिन सजाए हमे बिख फैल होए अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रह सरनाम समाल छाड़ सियानप सगली मना सार संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो ब्योहार इहां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहे प्रभ आप अनक विस्थार एक ते भय एक अराद प्राशित गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत।

दर्श खोए मन बिकसे सार चरण धोए ना के मन तार रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर्म गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाई प्रभक्षांत दीन दयाल भगत वशिष्ठ कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरकारन करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुणी यार नीच अजान नानक तुमरे शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए कि निम करके गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम कथा मन पाई वह भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भले सो करणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निरगुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार हो कशना दृष्टेता पापन तब कहते होता जब तारी ही अपन सुन समाध तब बैर ब्योर के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर्षो कौक से व्यापत जब अपन आप आपार ब्रह्म तब मोह कह के सोवत परम अपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हर न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब अंध मुक्त कौ किसको गनी जब एक हरा गम अपार तब नरक सुर का कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुवाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योतर है तब कवन डार कवन कत डराए आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर गम अपार अविनाशी सुगे अपने आसन तह जन मन कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्माण तह कौन कमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह चल चित्र लगत कौकीस जह जो स्वरूपी जोर संग समावे तह किसे भूकम तृपतावे करन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जावे अपनी सोभाए अपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेरक देव कहाँ कौचीन जब अपने आप उतार है तब सगने आप सगन कहाँ विचार है जह अपने ऊंचे अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जय अशल अशेदा फिर समाया ऊह किसे व्याप्त माया आपस गौ आपे आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपने आप आपतियारा तह कौन कदे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते ऊंचा नानके आपस को आपे पहाउचा जह आप रचो प्रपंच अकार त्यो गुण में किन्नो विस्थार पाप।

हार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारे आपे का विस्थारे जात सुभावे त सृष्टि उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए अपन सूर सब जगत परोए जाको प्रभु जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कबेता नानक सगल सृष्टि का जेता जी अजंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिसको न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस्ता जबर कह को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत अपार नानक दास दा बलहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे हो बे आप परत पल है जीअन बहु भांत जो जो रचियो सुत सत्यात जिस भावे तसलय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हर नानक एक जानिया जन लागा हरे कहनाए जिसकी आस न बिरथि जाए सेवक को सेवा बने आई हुक्म बुझ परम पद पाई इसते उपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निरवैर जय गुर के पैर एह लोक सुखी है परलोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मेले सार संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ दे का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण कहे सुवाओ आठ पैर प्रभेखो नेरा मिटिया ज्ञान बिन से अंधेरा सोने उपदेश हृदय बसाओ मनुष्य नानक फल पावो हलत पल दो लिहो सवार राम नाम मंत्र उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन वसे ते साज परिखिया मन ता नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह ने बैखे तुमारी एका टेक रखो मन माहे नानक बोर न आवे जाहे तिस ते दूर कह को जाए उबरे राखण हार त्याए निरभौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राख है तिस नाही दुख नाम जपत मन होवर सुख चिंता जाहे मिटे अहंकार तिस जन पवचन हार सिरे उपर ठाडा गुरसूरा नानकता के कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रमाण अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एकस कटमाहे अनक रंग नाना दृष्टा है नव नित्य अमृत प्रभ का नाम देहि में इसका विश्राम सोन समाद अनहत नाद कहन जाय अचर्ज बसमाद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए सो

अष्टपदी पूरे गुरु का सुनि उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर क्यों त्रय चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोट बेनती करहो सार संग अगन सागर तरहो हर धन के भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सार संग भज परमानंद नरक निवारो उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे आधार उत्तम श्लोक सार के बचनाम लेख लाल हे रतन सुनत कमावत होत उधार आप त्रय लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाज सुन सुन अनंत करे प्रभु गाज प्रगटे गोपाल महाद के माथे नानक उदरा तिनके साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु हम लाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सार संगलैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक ने भेखे पहमारी प्रभु की उस्तत करो संत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोहत निदान सर्वेशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बोर न होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वत सिद्ध विद्या तप जोग प्राप्त ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मर सगल ते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृश्यता एह फल।

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार सिंगारिया गर्भगण मैं जने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भार जोबन भोजन सुख सूद बिरद भयाउ प्रसाग सैन मुख अपयाउ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारू पर सुख बस है सुत भरात मीत बनता संग हस है जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साध बसा दीने हस्त पाम करने तरसना तिसे त्याग वर संग रचना ऐसे दुख मूढ़ अंध ब्यापे नानक काढ़ लिहो प्रभापे आदि अंत जो राखण हार तिसो प्रीत न करे गवार जाकि सेवा नवनिद पावे तासो मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सरसरा हजूरे ताको अंधा जान दूरे जाकि टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुकदे जान सदा सदा हो भूलन हार नानक राखण हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मान जो होवन सो दूर प्राण छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे धोए गर्द प्रीत भसम संग होए अंधकु मैं पत्र बिकराल नानक काट लिओ प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपस नहे कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरे अथाह जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक तेजन सहि समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लिहोड़ निभावे कहां बुझारत बुझै डोरा निस कहिए तो समझे पोरा कहां बिसन पर गावे गोंग जतन करे तो पीसुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तुहां उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय स्वाविन जो बहराई तासो प्रीत बलुआ के गृह पीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मान मने प्रतीत काल न आवे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा हम सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्र धारी तुम ते हो सुहाग्याकारी तुमरी

नानक कहो न सिजय बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछा पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे। एक पीना दे दस पीहर ले, तो मूड़ा कहो कहाँ करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, तंग कीजे साध नमस्कारा। जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुखता हु मन उठा। जिस जाने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगणत साहु अपनी देरास, खात पीत बरते अण दे उलास। अपनी अमान साहु ज्ञानी मनरो, अपनी पर आप ही खोवै। बहर उसका विश्वास न होवै, जिसकी वस्त तसी आज्ञा राखै। प्रभु की आज्ञा मन है माथा है, उसते चौगुण करे निहाल। साहब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत। सरपर होवत जाणिया नेत, बिरख खिसाया स्यो रंग लावे। ओ बिन स्यो मन ज्योति सैसो चालन हार। लपट रहे हो ते आंदे अंधार, बटाऊ स्यो जो लावे नेहे। ताको हाथ न आवे केहे, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई। कर कृपा नानक आप लै लाई, मिथ्या तन धन कुटां बसवाया। मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल। मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अस बस्तरा। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या ध्रोह मोहभिमान। मिथ्या पशु प्रकृत गुमान, आस्थिर भगत सार की शरण चरण। मिथ्या सरण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है। मिथ्या नेत्र पेखर पर त्रिया रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तानी पर उपकारा, मिथ्या बास लेर विकारा। बिन भूजे मिथ्या सब भये, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कहो बत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता के दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रण बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपण के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जे कड़ बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रह तेवर कश्यवर कमावत, माने प्रीत मुखों गण लावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्म मराय। जिसके अंतर बस निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम भाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना की आप है मानै। आप है आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियाणप सगल ते रहत, सबका जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थन अंतर है समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहंगमेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरदेव। अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परमगत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावै, तिसे त्याग तवर लुभावै। जे प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पैर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तु सब को मानै, मुख ताको जस मानै। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगह मान पावै, नानक परसेदी कर जावै। जे प्रसाद अरोग कंचन देही, लिव लव तसराम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उला रहत, मानसिक पाव है हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिदर ढाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुचे, मन सास सास सिमरो प्रभुचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानकता की भगत करे। जे प्रसाद या भूखण पैरी जय, मन ते सिमरत के वालस की जय। जे प्रसाद असव हस्ते असवारी, मन तिस प्रभु को कभु न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना, राग प्रे प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन मनत बनाई, उठत बैठ सत सह त्याई। तिसह त्याय जो एक अलख है, इहां नानक तेरी रख है। जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਤਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੇ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵ ਹੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਵਰਕਤ ਲੱਗ ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਗ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਮੂਲ ਨ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂਰਤ ਤਾ ਕੋ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸ ਜਨ ਮਨ ਸਲਾਹ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਓ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਸੇ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਭੁ ਕੁਛ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ ਨਾ

अचरज कथा अष्टपदी सार के संग मुखुजल होत सार संबल सगली खोत सार के संग मिटे अभिमान सार के संग प्रगटे सो ज्ञान सार के संग बुझे प्रभ नेरा सार संग सब होत नबेरा सार के संग पाए नाम रतन सार के संग एक ऊपर जतन सार की महिमा बरने कौन प्राणी नानक सार की शोभा प्रमा है समानी सार के संग या गोचर मिला सार के संग सरा पर फुला संग आवे बस पंचा सार संग अमृत रस पुंचा सार संग हो सब की रेन सार के संग मनोहर बैन सार के संग न कतहु तावे सार संग अस्तित मन पावे सार के संग माया ते भिन्न सार संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सार संग दुश्मन समीत साधु के संग महापुनीत सार संग किस्यो नहीं बैर सार के संग न बिंगा पैर सार के संग नाही को मंदा सार संग जाने परमानंदा सार के संग नाही हो ताप सार के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने सार के संग न कब हुतावे सार के संग सदा सुख पावे सार संग बस त्या गोचर लहे साधु के संग जरसा है सार के संग बस है थान ऊंचा साधु के संग महल पहुंचा है सार के संग दृढ़ सब धर्म सार के संग केवल पार ब्रह्म सार के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान सार के संग सब को लोधार है सार संग साजन मीत कुटाम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे सार संग धर्म राय करे सेवा सार के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन सार संग अमृत गुण गायन सार के संग सर्ब थान गम नानक सार के संग सफल जनम सार के संग नहीं कछकाल दर्शन भेटत होत निहाल सार के संग कलूखत हरय सार के संग नरक पर हरय सार के संग इहां उहां सुहेला सार संग बिछरतर मेला जो इच्छा सोई फल पावे सार के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साधृत बसाय नानक उदर सार सुन रसाय सार के संग सुनो हर नाओ सार संग हर के गुण गाओ सार के संग नमन ते बिसरय सार संग सर पर निस्तरय सार के संग लगे ब्रह्म मीठा साधु के संग घट का डीठा साध संग पहे आज्ञाकारी साध संगत पही हमारी सार के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग सार की महिमा भेद न जान है जेता सुने तेता बख्याना है सार की उपमा त्यो गुण ते दूर सार की उपमा रही भरपूर सार की शोभा का नाही अंत सार की शोभा सदा भी अंत सार की शोभा ऊंच ते ऊंची सार की शोभा मूच ते मूची सार की शोभा साध बन आई।

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान, जैसे राजरंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, ज बसदा को खुद को चन लेप। ब्रह्म ज्ञानी कहे गुनाओ, नानक जो पाव कसाय सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी ही निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रगास, जैसे तारी उपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच ते उचा, माने अपने हिसाब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जन प्रव्याप करे। सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सला समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी ही बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी ही एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ज्ञानी के नाम प्रभार। ब्रह्म ज्ञानी सरासर जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी के होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मर ब्रह्म ज्ञानी किमित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सरा नमस्कार। ब्रह्मी सब सृष्टि का कर्ता, सर जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा।

है, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। नानक तिस बल हारण, जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावण करण जोग, जो तिस भावे सोई होग। खिन में थाप उथापन हर अंत नहीं किछ पावे, हुक्मे धारिया धर रहावे। हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार। कर कर देख है अपनी वडियाई, नानक सब में रहिया समाई। प्रभ भावे मानुख कत पावे, प्रभ भावे त पाथर त्रावे। प्रभ भावे बिन सास राख है, प्रभ भावे त हर गुण पख है। प्रभ भावे त पतत उधार है, आप करे अपन विचार है। दोहां सिरियां कै आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी। जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानुख ते क्या हो आवे, जो दस भावे सोई करावे। इसके हाथ हुए तो सब किस ले, जो दस भावे सोई करे। अनजानत बिखे जे जानत अपने आप बचै, पर मैं भुला दह दस्तावे। निमुख मैं चार कुंड फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे। नानक ते जन ना मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज। पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवे। तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस। ताका लेखा न गणे जगदीश, जियो पिंड सब तस्की रास। घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनते आप बनाई। नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बाल नाही इस हाथ। करन करावण सर्व को नाथ, आज्ञाकारी ही बपरा जियो। जो दस भावे सोई फुन थियो। कबू ऊच नीच मैं बसै, कबू सोग हर खरंग हसै। कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू बकास पयाल। कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावनहार। कबू नृत करे भपांत, कबू सोए रह दिन रात। कबू महा क्रोध विकराल, कबू सर्ब की हो तरवाल। कबू होए बह बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा। कबू अब कीर्त मह आवे, कबू भला भला कहावे। जो प्रभ राखे तभी ही रह, गुरप्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखियान, कबू मोन धारी लावे ध्यान। कबू तड़ तीर्थ इशनान, कबू सिर सदग मो ज्ञान। कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया। नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवे नचावे। जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा वरन कोए। कबू सार संग तिहो पावे, स्थान ते बहुर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उसे स्थान का नहीं विनाश। नाम रते करंग, सदा बसह पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल

अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै भजोन प्रमावै। भूंगा जो करै गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकी है मुक्ति आगे सुख पावै। धनवंता होय कर गरबावै तृण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश। सब ते आप जाने बलवंत खिनमय होय जय पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तस्करे खुआरी। गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जय नानक दरगाह प्रवान। कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन करे आत्म नहि द्रवे हर दरगे कहो कैसे गवे। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व किरेन जा का मन होए कहो नानक ताके निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कस होए तब इस को सुख नाही कोए। जब ही जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूट है गुर प्रसाद नानक हो छूट है। सहस कटे लख कोठता तृप्तनावे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करै नह तृप्तावे खप खमरै। बिना संतोख नहीं को राज सुपन मनोरथ बिरथे सब काज। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए। करन करावने आपे आप सरासरा नानक हर जाप। करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृश्य करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए। जो किसकीनो सो अपने रंग सब का संग। बुझ देख करे विवेक आपे कापे अनेक। मरे न बिन सह अव न जाए नानक सद ही रहे समाए। आप उपदेश है समझे आप या फिर रचा सबके साथ। आप किनो अपन विस्तार सब कछ उसका हो करने हार। उसते भिन्न कहो किस होए थान थलन तरे। अपने चलत आप करने हार कौत करे रंग या पार। मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुरप्रसाद किन्ने वख्यानी। सच सच सच सब कीना कोट मदे किन्ने बिरलै चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण वख्याणी।

कै संत सरण जो जन परै सो जन उद्रण हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुखण यार जा कटै संत के दुखण जमते नहीं छुटाए संत के दुखण सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुखण मत होए मलीन संत के दुखण सुबत हीन संत के हते को रखण कोए संत के दुखण थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भीतर आए संत के दुखण ते मुख पवै संतन के दुखण काग ज्यों लवै संतन के दुखण सर्प जोन पाए संत के दुखण तृप्त जोन करमाए संतन के दुखण तृष्णा में जलै संत के दुखण सब को छलै संत के दुखण ते सब जाए संत के दुखण नीच निचाए संत दुखी का था को नाहे नानक संत पावे तो ए भीगत पाहे संत के नंदक महातताई संत के नंदक खिंटक न पाई संत के नंदक महात्यारा संत के नंदक परमेश्वर मारा संत के नंदक राजते हीन संत के नंदक दुखियार दीन संत के नंदक सर्ब रोग संत के नंदक सर्ब जोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत भावे तो उसका पी होय मोख संत के दुखी सदा अपवित संत के दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत के दुखी महा अहंकारी संत के दुखी सदा भिकारी संत के दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुख ते टराए संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत भावे तलै मिलाए संत का दुखी यद बीते टूटे संत का दुखी कदे काज न पहुंचे संत का दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर दे थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किश नाहे अपन भी जाप ही खाहे संत के दुखी कवरन राखण हार नानक संत पवे तले उबार संत का दुखी इं बिल लाए जो जल भी होन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक कींदा नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला जंबू आड़ तिल खेत मह दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथ्या कहत किरत नंद कातुर ही पया नानक जो सुभावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख न त्रिष्ठा कोई जैसा भावे तैसा कोई होए पया किरत न मेटे कोई नानक जान सच्चा सोए सब कर तिसकी ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याव सास ग्रास सब कछ वर्त है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनों कृपा करे तिसे अपन नाम दे

एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए। अष्टपदी मानुख की टेक ब्रिथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके अधी यह रहे अगाए, बहुर न तृष्णा लाग आए। मारे राख है एको आप, मानुख का किस नाई हाथ, तिसका हुकम बूझ सुखोए, तिसका नाम रख कंठ प्रोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लाग कोए। उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सदव्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सरा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, सार संग बिनसे सब संग। चरण चलो मारे गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। हर हर कर्म सरवण हर कथा, हर दरगे नानक कूजल मथा। बड भागी ते जन जग माहे, सरासरा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे बिचार, से धनवंत गणी संसार। मान तन मुख बोले हर मुखी, सरासरा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, त्युत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक हतने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सूझै, तिसकी जानो तृष्णा बूझै। सार संग हर हर जस कहत, सर्व ओ अर्जन रहत। आन दिन कीर्तन के मैं सो इंद्र बां, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसन लागै दुख। जिसको हर प्रमाण चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डराए। जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तर सब बूझिया। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई अस्थूल। न कि जन्मै न किछ मरै, अपन चलता भी करै। आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रहे थाप उथाप। अविनाशी नाहीं किस खान, धारण तार रहो ब्रह्म। अलख अपेव पुरख प्रताप, आव जपाय नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदरै तनमंत। प्रभु के सेवक सगले उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख बिसारण। आपे मेलै कृपाल, गुर का शब्द जपै निहाल। उनकी सेवा सोही लागै, जिसनु कृपा करे बड़ भागै। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तन पुरख को उत्तम करमान। जो किस करे सो प्रभु के, सरासरा बसे हर संग। सहे सुभाए होवै सो होए, करने हर पछाणे सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माए समाए, ओहि सुख निधान नूं बने आए।

अष्टपदी अविनाशी ब्राह्मण महराख मानुख की तुप्रीत त्याग तिस्ता पर नाही किस कोय सर्वनंतर को सोए आपे बिना आपे दाना घर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शांद साध तेरे की चरणी पाओ नानक के मन हिवन राव मनसा पूर्ण सलना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनदरु मंगल सर जाक सर्वथोक सुनिए कर ताक राज महराज जोग मह जोगी तप मह तबीसर ग्रिस्त मह भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समात ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मह जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिद किनो विस्तार प्रव्य अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे हिपुरिया सब भवन नाम के संग दर्शन सरवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जन जाकर दे प्रवेश सत नृत बुझे जे को देवता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बुझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक जोत सुभावे सो वर्तिया बिस मन बिसम भय बिस्माद जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग एक लिव लागी।

अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आव सत सर सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार क सर सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मानिया करन कराम पछानिया जाकर दे विश्वास प्रभाया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपो होए बसाना जिस ते उपजत समाय समाना बस्त माहेले बस्त गडाई ताको भिन्न कह न जाई बुझे बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सला पुजारी ठाकुर का सेवक मन प्रतीत ठाकुर का सेवक इंद्रमल रीत ठाकुर का सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक सास सास मार है अपने जन का परदा ढक है अपने सेवक सर पर राख है अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत में कोई न लख है के सेवक को न पहुंचा है प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दस दिस प्रगटाया नेकी कीरे मैं का राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काटते आप ताको रख दे कर हाथ मानस जतन करत भात तिसके करत बिरथे जात मारे न राख है अवर न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ लख वडाणी बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसकी शवर नाही दृष्टाया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संग नाम रस जो जंत्र बताने मन तन नाम नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जान के सदकाम बोलो जस जेवा दिन रात प्रभु अपने जन किन्नी दात करे भगत आत्म कच्चाए प्रभु अपने सोरह समाए जो होवा होवर सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे कन आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तन की ओट लहे मन तन अपना तिन जन देहे जन जन अपना प्रभु पछाता सोजन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे सपा मिटावे अवर स्यानप सगले शाड तिस जन की तो सेवा लाग।

तिस कै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवको गुरसला दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन कट है, गुर का सिख विकार ते हट है। को नाम धन दे, गुर का सिख विभागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है। गुर का गृह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को करकश न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचा है सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत हो न कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आव करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बेस बिस्वे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान। सो सतगुर जिस हृदय हर नाव, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, अठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जान जान एक है आप, नहीं कछ परम। सह सियानप लै आना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसद चरणगत निर्मल रीत। भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन कर न्यागाने, मन संतोख आत्म पति याने। पूरा गुर आख हो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए।

अष्टपदी जब अकार हो कछ न दृश्येता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर बोल के साथ जब इसका वर्ण चेहना जापत तब हरक्षो को किसे व्यापत जब अपन आप आपार ब्रह्म तब मोह कह किसोवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक हरा गम अपार तब नरक सुर का कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव सकत कह कतठाए जब आप है आप अपनी जोत रह तब कवन डार कवन कत डराए आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अविनाशी सुख अपने आसन तह जन मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही चर्जा नानके अपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तो जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल छतलत कौकीस जह जो स्वरूपी जोर संग समावे तह किसे भूकम त्रिपतावे करन करावन करने हार नानक करते कना है सुमार जावे अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कदेव कहा कौचीन जावे अपन आप उतार है तो सगने अप सगन कहा विचार है जह अपनी ऊचे अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्मन है बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप जह अशल अशेदा भेर समाया ऊहा किस व्याप्त माया आप सको आपया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह एका एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपने आप आपतियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते ऊचा नानक आप सको आपे पहुचा जह आप रचो प्रपंच आकार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पाप पुन तह पही कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखयान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक कह जह अवगत भगत है आप जह पसरे पासार संत प्रताप दुह पा कापे तनी उनके सुबान हो बनी आपे कौत करे अनंत चोज आपे रस भोग निरजोग जिस भावे तिसे अपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेश

जी अजंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे का विस्तार जात सुभावे तस सृष्टि उपाय, अपने भाणे लै समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, अपन सूर सब जगत परोए जाको प्रभु जी आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् कबेता नानक सगल सृष्टि का जेता, जी तर सब तथ दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राख तिस कोई न मार है सो मुँह अज समनो बिसार है, तिस्ता जबर कह को जाए सब सिरक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ, गुण निधान बेअंत अपार नानक दास ला बलहार, पूर्ण पूर है दयाल सब उपर होवत कृपाल, अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहे हो बेआप, प्रतपल है जीवन बहु भांत जो जो रचो सुत सहत्यात, जिस भाव है तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हर नानक एक जानिया, जन लागा हरे कहनाए तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक सेवा बने आई हुक्म बूझ परम पद पाई, इस ते उपर नहीं विचार जाके मन बसे निरंकार, बंधन तोर पए निरवैर अंदर पूजे गुर के पैर, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले, सार संगमल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद, राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण कह सुआओ, आठ पहर प्रापे खो नेरा मिटिया ज्ञान बिन से अंधेरा, सोने उपदेश सिर दे बसाव मनिषे नानक फल पाव, हलत पल दो लिहो सवार राम नाम अंतर उर तहार, पूरे गुर की पूरी देखिया जिस मन बसै साज परीखिया, मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए, सच व्यापार करो व्यापारी दरगह ने बैखेब तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे, तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे राखन हार त्याए, निरभौ जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छूटै, प्रभु राखै तिस नाहि दुख नाम जपत मन होवर सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोय न पहुँचन हार, सिर उपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ट, चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक प्रमाण अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सहोत निहाल ताके निकट नयावत काल, अमर पए अमरा पद पाया।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद माने अंतर क्यों बिंद आस अनित त्याग त्रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सार संग अगन सागर तरहो हर धन के पार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सार संग भज परमानंद नरक निवार उधारो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित व नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हे आधार उत्तम श्लोक सादके बचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कमावत होते उधार आप त्रैलोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हर रंग जय जय सब दे अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगट है गोपाल महाद के माथे नानक कुदरतन के साथे शरण योग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आ मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सार संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुनसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक ने बेखेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुख मने सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो तन दान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहर न होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नाम निद बुद्ध ज्ञान सर्व त सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मर सगल ते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टि।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

तुमरी शरण तुम्हारी अस तुम ही सजन सुहेले रखो रखन हार दयाल नानक करके गोले जब लो नहीं पागल लारी उदय तब लो परमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पुछतायो तत विचार जह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नाया आयो।

त्रिहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सुखहु टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाई। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह पुरसह चटिया। उद डिठे सच्चे पातशाह, मल

सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। मनुख रोग है और ए रोग दो हिस्सों विच प्रगट होंदा है, तन दे तल ते रोग बन के मन दे तल ते सोग बन के। तो क्या जीवन भर रोग ते सोग विच जीवना ही मनुख दी प्रालब्ध है, मनुख दा भविष्य? यही मनुख है, रोग विच जीवे सोग विच जीवे, चिंतावां ते इतनी पीड़ा ने इतना बोझ है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है, गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दी बैसांतरे। कोई मनुख बहुत पहाड़ दी उच्ची चोटी तो गिर रहा है, हजारा फुट दी बुलंदी तो थले गिर रहा है। गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दीप बैसांतरे। ज्वालामुखी अग विच गिर जाए और कोई जिंदा जल रहा है। बहंत अगा तोयंग तरंगं अथाह सागर दियां लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। बड़ी बुलंदी तो गिर रहे होवे, ज्वालामुखी अग विच जल रहे होवे, डुब रहे होवे। इस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, बहंत अगा तोयंग तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरण। घरेलू चिंता, जगत दी चिंता, परिवार दी चिंता, आर्थिक चिंता, ये ऐसी है महाराज कहने जैसे कोई पहाड़ दी बुलंदी तो गिर रहा हो, ज्वालामुखी अग विच जल रहा हो, या फिर अथाह सागर दियां लहरां विच डुब रहा हो। इंज कह रहो मनुख दा पतन हर वक्त हो रहा है, हर वक्त गिर रहा है। कहिंदे ने यात्रा ते चढ़ाइयां दे चौंदी है, निवाण विच ते पतन है, गिरावट। पानी निवाण विच जा रहे स्वास्थ्य कहने आ गिर रहा है, गिर रहा है। जिंदगी निवाण दी तरफ जा रही है, यात्रा ते ओ होंदी है जब चढ़ाइयां दी होवे। जब कोई चढ़दा है एक अवघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। किसे हद तक मनुख दी जीवन शक्ति निवाण दी तरफ जावे काम बनती है, जीवन शक्ति ऊंचाइयां दी तरफ जावे राम बनती है। राम रस ते काम रस इज कह लो बुलंदी ते निवाण है, निवाण है, निवाण है। इस पतन दी थोड़ी जिया देर लई ते लोड़ है, ताकि ख्याल आ जाए चढ़ाइयां ते चढ़ना। जद शक्ति निवाण दी तरफ जांदी है, जानी चाहिए कुछ देर लई संतान नू जन्म देंदी है। जद यही शक्ति चढ़ाइयां दी तरफ जांदी है तो भगवान नू जन्म देंदी है। मनुख है जो संतान नू भी जन्म देंदा है, भगवान नू भी जन्म दे सकदा है। संतान नू जन्म देण दे ते पशु भी समर्थ होए ने, कीड़े मकोड़े भी समर्थ होए ने। संतान नू जन्म देण दे करीबन करीबन सारे मनुख भी समर्थ हो जांदे ने। जीवन ते उस दिन सफल होंदा जद कोई भगवान नू जन्म देंदा है। और भगवान नू जन्म देना की होंदा है, उस स्वयं भगवान मई हो जांदा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछाने। हुण इत्थे प्रश्न खड़ा हुंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है तन रोग है तो फिर की करिए? रोग विच जीविए, सोग विच जीविए, इस तो छुटकारा हो सकदा है। बस धार्मिक ज्ञान ते जगत दे ज्ञान विच यही अंतर है।
फ्राइड जैसा दार्शनिक कहिंदा है, काम देखते जीवना ही पड़ेगा, हंकार देखते जीवना ही पड़ेगा, लोभ देखते जीवना ही पड़ेगा। ये मनुख की शक्ति है और अपनी शक्ति ना लड़के मनुख बच नहीं सकता। ये तो एक महान ताकत है। लोभ इस को कुछ करवाना चाहता है, हंकार इस को बहुत कुछ करवावेगा, काम भी इस को बहुत कुछ करवावेगा। इस देश से जीवना पड़ेगा। बस भारत दा मनीष कहता है नहीं, इस तो बचिया जा सकता है, इस तो उच्चा उठाया जा सकता है। करीबन करीबन पश्चिमी विद्वान ऐसा कहते हैं कि भारत दे मनीष बहुते कल्पनावां विच ने, कल्पनावां विच ने। कि भारत दी मनीष दी भाषा जे बोलीए तो कह सकते हैं पश्चिमी विद्वान किसी हद तक भुलेखे विच ने, अज्ञान विच ने, ना समझी विच ने, दानिशमंदी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। ओते कह रहे ने ए भारत दे मनीष कल्पना दी दुनिया दे जी रहे ने, कल्पना दी दुनिया जी रहे ने। पर कौन इना नु दसे? कहंदे ने उस दी ते कल्पना भी नहीं कीती जा सकदी जो है नहीं, जो है नहीं। अगर प्यास है तो पानी जरूर है, भुख है तो भोजन जरूर है। जीवन विच परम सुख दी जे प्यास है तो परम सुख है, परम सुख है। परम आनंद दी जे तड़प है तो फिर परम आनंद है। ओ कहिंदे ने टोल टोल के खोज खोज के ऐसा देखिया, धन मिलिया, संपदा मिली है, और तरह तरह दे पदार्थां दे अंबार लगे ने, सुख ते नहीं मिलिया, किधरे भी नहीं मिलिया। अधूरी सच्चाई ते उन्होंने भी कबूल, हुण ते मेडिकल साइंस भी कह रही है कि 60% बीमारियां साडे काबू विच नहीं है, नहीं है। मानसिक रोग विच जीवना बस यही मनुख दी जिंदगी है और कुछ भी नहीं है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने नहीं, एक परम जीवन है, ऐसा जीवन जेदे च जन्म दा दुख नहीं है, जेदे च मरण दा दुख नहीं है, और जिस दे च तीजा दुख बुढ़ेपे दा रोग भी नहीं है। कुछ ना समझ ऐसा कहंदे ने कि क्यों मनी है, जीवन दुख है, शरीर रोग है। चंगे भले कई स्वास्थ्य शरीर दिखाई देंदे ने, गुरबाणी नहीं मनदी। अगर स्वास्थ्य दिखाई देंदे ने तो एक दिन बुढ़ा किस तरह हो जाता है? आखिर बुढ़े होने का बीज तो इस अंदर पे है, तो जिहड़ा बीज इसनु बुढ़ा कर सकता है उन्हें रोग कहा जाएगा, और की आख्या जाएगा। जिहड़े स्वस्थ दिखाई देंदे ने वास्तविक उन्हां दियां थोड़ी जियां बीमारियां सीमा विच ने, या औषधियां खा खा के रोग नू सीमा विच कर लैंदा है ताकि पीड़ा महसूस ना होवे, रोग ते खत्म नहीं होए। अगर रोग खत्म हो गए ने तो फिर बुढ़ा किस तरह हो सकता है? फिर बुढ़ेपा तो एक ऐसा रोग है, इसनू सीमित करना भी बड़ा औखा है, कठिन है। ये तो वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। भारत के सारे संत कहंदे ने बुढ़ेपा स्वयं अपने आप विच एक रोग है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसे नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। मन विच वासना बड़ी प्रबल है, चलिए पर चलन दी समर्था पैरां विच नहीं है। मन विच बड़ी प्रबल वासना है पदार्थां नूं भोगण दी, इंद्रियां दी सत्या है नहीं। कहिंदे ने एक जवान दी पीड़ा नालों हजारां गुणा वध पीड़ा हुंदी है बुढ़े कोल। क्यों? जवान नालों हजारां गुणा वासना उसकी वध गई है, उम्र दे नाल नाल वासना वधदी है। ते उन्हां वासनावां दी पूर्ति कर सके शरीर साथ नहीं दिंदा, शरीर साथ नहीं दिंदा। इस वास्ते बुढ़ा बहुत पीड़ा विच जीवदा है, बहुत पीड़ा विच जीवदा है, बड़ी मानसिक पीड़ा हुंदी है। बुढ़ेपा खुद एक रोग है।
धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नानक बद्धा घर तहां जिथे मिर्त न जन्म जरा। असी हुण अपना घर उथे बनाया जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा हुंदा है, जीवन दे होंदे होया जीवन तो छुटकारा किवें मिले, मौत दे होंदे होया मौत तो किवें बचीए, और जन्म हो गया है इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए, इना रोगां तो और में छुटकारा होवे। प्रथम चिंता तो किवें बचीए। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा थीम, जिन्हों भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है। इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारग संसार को नानक फिर नहीं कोए। पर जिन्ना अर्थां विच जगत इस नूं पढ़दा है ये अर्थ नहीं है। अज तक जिन्ना अर्थां विच इस नूं पढ़िया जा रहा है ये अर्थ नहीं है। मनुख इस दे अर्थ करदा है, अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर, भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जांदा है कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जांदी है तो कह देंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। काटा पै गया, दिवालिया हो गया, कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उस दी कर जो अनहोनी आउंदी है। श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने ए अर्थ नहीं है। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ए देखना पेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मनुख दी चाहत है। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी नाल होया होवे पे मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ए दो कारण ने, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं नहीं चाहता, ऐसा होना ही चाहिए मैं चाहना। पहले इस गल दे चिंता है किधरे हो ना जावे, जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं चिंता नो एक पासे रख, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नो परे सुट, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा वह नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे दी तरह हो जावा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। और एक जवान ए आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना हुआ, ए नहीं होंदा, ए नहीं होंदा। एक बुढ़ा ए आखे मैं कदी नहीं मरा, ए नहीं होंदा, ए नहीं होंदा। जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी, कबूल कर दिया ही। मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बाला तर हो जाता है, पर किवें होवे, इहदी साधना की कीती जाए, किस तरह कीती जाए। क्योंकि गल इतनी चल रही है और धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है, किवें छुटकारा होवे। गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज करदे सन, किवें इलाज करदे सन। प्रथम देखना पएगा
कि मनुख जिथे भी बैठा है, परिवार विच बैठा है, बाजार विच बैठा है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच बैठा है, कारोबार विच बैठा है या वेला बैठा है, बैठा है भूतकाल दियां यादां विच, बैठा है भविष्य की चिंता विच, ये दो बोझ इस दे दिमाग ते पए ने। मनुख हमेशा भविष्य विच जीवदा है, मनुख हमेशा भूतकाल विच जीवदा है। कहिंदे ने तन नूं भज्जण दौड़न लई अस्थान चाहिदा है, जगह ही ना होवे खुली तो तन भज दौड़ नहीं सकदा, ते मन नूं भज्जण दौड़न वास्ते समा चाहिदा है। मन दी भज दौड़ समय विच आउंदी है, अस्थान विच नहीं आउंदी। अस्थान विच दौड़दा है तन, समय च दौड़दा है मन। अगर जगह ही नहीं, अस्थान नहीं, तो तन एक जगह बैठ जाएगा, अगर समय ही खो जाए तो मन मिट जाएगा, मन टिक जाएगा। सारी दुनिया विच एक गल ते पकड़ विच आ गई है, सुख उदों बनता है, आनंद उदों बनता है जिथे मन किसी संगीत की धुन विच, किसी नृत्यकार की कला विच, किसी साज दे वादन विच, आवाज विच, मधुर ध्वनि विच वक्ती तौर ते मन टिक जाए, रस्ते बन जाता है, आनंद ते बन जाता है, पर सदीवी टिकाओ नहीं आता। क्यों? मन भटकदा है समय विच, ते समा बहुत वड्डा है भविष्य, समा बहुत वड्डा है भूतकाल। पता नहीं कदों असी चले सी, लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा समा। भूतकाल साडा बहुत लंबा है, माजी साडा बहुत लंबा है, ते भविष्य साडा बड़ा लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होवांगे, असी अज दे नहीं हां, हिमालय पर्वत तो पहले दे हां, सूरज चंद तारियां तो भी पहले दे हां। ना बोध हेच निशान हाजे जमीनो आसमां, शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। हे प्रभु, भाई साहब भाई नंदलाल कहिंदे ने, अजे जमीन ते आसमान दा ते नामो निशान नहीं सी, मैं ते उदों दा भटक रहा, कोई अज दा? ऐसा एक सूफी संत ने भी आख्या, आदम न बूदो मन बूदम, हव्वा न बूदो मन बूदम, ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम। ऐ खुदा, कोई मैं अज दा आशिक हां? अज दी तेरी तलाश कर रहा। अचेतपणे सुचेतपणे कदों दा मैं तेरे रस्ते ते आ, जदों तू अजे मनुख भी नहीं बनाए सन। आदम न बूदो मन बूदम, हव्वा न बूदो मन बूदम, अजे माया रूपी संसार भी तू नहीं बनाया सी, मैं है सी। ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम, ए आकार नहीं सी, हे निरंकार, मैं भी निराकार होके विचरदा पिया सी ते भटकदा पिया सी, मैं ते कदों दा, अज दा थोड़ी है। मन नूं भटकण लई समा चाहिदा है, भूतकाल भविष्य। धर्म कहिंदा है भूतकाल ते भविष्य दियां ही जो है चिंतावां तो एक पासे हो, मन नूं लिया किथे लिया? वर्तमान विच, वर्तमान विच। भगवान दी झलक थोड़ी बहुत जद भी मिलेगी वर्तमान विच मिलेगी, और ओही भगवान दी झलक वर्तमान नु भी बिटा के संपूर्ण भगवान हो जाएगी, संपूर्ण परमात्मा हो जाएगी, संपूर्ण ईश्वर हो जाएगी। पर सवाल यह पैदा होता है, भविष्य नु और भूतकाल नु किवें मिटाइए? ते हर थां ते पीछा करदा है मनुख, जिथे भी बैठा है बस इतना ही समझ लो, चाहे वह दार्शनिक है, चिंतक है, धनवान है, गुणवान है, मूर्खां च बैठा है, भविष्य की चिंता च बैठा है, राजा है, भिखारी है, भूतकाल दियां यादां विच बैठा है। क्योंकि मन नूं दौड़न ते भज्जण लई समां चाहीदा है, भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। तो पहले समझिए वर्तमान किन्ना क है। वर्तमान, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, हम आदमियां एकदमे मौलत मौत न जाना, वर्तमान एकदम है। वर्तमान अज दा दिन नहीं है, वर्तमान अज दी रात नहीं है, वर्तमान एक दम है जो मेरे मुंह च है, सारिया दे मुंह च है। जेड़ा दम अजे आया नहीं, वो ते मेरा भविष्य है, ते जेड़ा दम चला गया मेरे मुंह चो, वो ते भूतकाल है।
جو دم چلا گیا انو میں خرچ نہیں کر سکتا، جو دم اجے آیا نہیں میں اسنو ورت نہیں سکتا۔ ایک دم تو اتھے پرشن کھڑا ہوندا ہے، ایک دم دے وچ کی کر سکدے ہیں؟ ایک دم دے وچ کوئی لمبی یاترا نہیں ہو سکدی، ایک دم دے وچ کوئی لمبا چوڑا کاروبار نہیں کھولیا جا سکدا، ایک دم دے وچ کوئی اچھا وڈا محل نہیں کھڑا کیتا جا سکدا، ایک دم دے وچ کوئی لمبی چوڑی ودیا نہیں حاصل کیتی جا سکدی۔ پر گرو نانک کہندے نے ایک دم دے وچ پرماتما پراپت کیتا جا سکدا، جد بھی ملے گا ایک دم دے وچ، کیونکہ ایک دم نقد ہے تے دھرم دا سودا پرماتما دا سودا نقدی نال ہوندا ہے، نقدی نال ہوندا ہے۔ دنیا دے سارے مہا منتر ایک دم دے وچ پورے ہو جاندے نے، رام ایک دم دے وچ پورا ہو گیا، اوم ایک دم دے وچ پورا ہو گیا، اللہ ایک دم دے وچ پورا ہو گیا، واہے گرو ایک دم دے وچ پورا ہو گیا۔ کروڑ دفعہ واہے گرو واہے گرو آکھن نال ایک پاپ بھی نہیں مٹے گا، کروڑ دفعہ واہے گرو واہے گرو آکھن نال ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا، ایک دفعہ واہگرو آکھدیاں کروڑاں پاپ مٹ جان گے، ایک دفعہ واہگرو آکھدیاں کروڑاں دکھ مٹ جان گے۔ یہ تے پھر پہیلی ہو گئی، نہیں پہیلی نہیں، سارے مہا منتر ایک دم دچ پورے ہو جاندے نے، واہگرو ایک کوئی دم دی لوڑ ہے۔ ہن میرا سارا دھیان اسی منتر دے سنن دچ آ جائے، واہگرو، اور جیسے میں ایک دم وچ آواں گا سارے دے سارے دھیان نو لیاواں گا، اسے نو دھیان سادھنا کہندے نے، تو بھوت کال کھو جائے گا، بھوش کھو جائے گا، ورتمان نے بھگوان نو پرگٹ کر دینا ہے۔ شری کبیر کہندے نے، بیت کتیب افترا بھائی دل کا فکر نہ جائے، ٹک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا، ایک دم وچ ٹک جاؤ خدا حاضر ناظر ہے، پرماتما حاضر ناظر ہے۔ دھرم دی ساری سادھنا ہے کہ کسے طریقے نال ورتمان وچ آئیے، بڑے بڑے دارشنک ورتمان وچ نہیں جیوندے، بھوش دیاں چنتاواں وچ جیوندے نے، بڑے بڑے سیانے منک ورتمان وچ نہیں آندے، بھوت کال دیاں یاداں وچ بیٹھے ہوندے ہیں۔ اور ایک دفعہ منک ورتمان وچ آ جائے کہ ورتمان صرف ایک دم ہے، اس وچ آمدیاں منک تن تے من تو اچھا اٹھ جاندا ہے، تن روگ ہے من سوگ ہے، روگ سوگ تو اچھا اٹھ جاندا ہے، روگ سوگ دکھ جرا مرا ہر جنے نہیں نکٹانے، اس ہری جن دے نیڑے پھر دکھ روگ سوگ جنم مرن سب مٹ جاندا ہے۔ نانک بدا گھر تہاں جتھے مرت نہ جنم جنا، ایک ورتمان وچ آمدیاں اگلا جنم نہیں ہوے گا، مرن نہیں ہوئے گا، اور یہ جڑا جیون کول ہے اس تو منک اچھا اٹھ جائے گا اور بھگوان پرگٹ ہو جائے گا۔ یہی ایک سادھنا ہے اور یہی اوشتی ہے، یہی اوشتی ایشان دے بھرمن کر کے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج ونڈ دے رہے، ونڈ دے رہے۔ بابا فرید بھی کہندے نے، آج ملاوا شیخ فرید تاکم کونجنیاں منو مچندنیاں، اج ملاوا لے تو اج تو مراد کی اج دا سارا دن کتا ہی نہیں، اج تو مراد ورتمان، ورتمان تو مراد ایک دم، ایک دم۔ بھائی نند لال بھی ایسا کہندے نے، یک دم بخیش رانا بردم کے کیستم، اے وائے نقد زندگی رائے گاں گجست، میں نقد زندگی برباد کی تھی، کہ نقد زندگی کی سی جڑا میرے منہ وچ دم سی، نقد سی، جڑا دم آیا نے اداری سی، جڑا دم چلا گیا وہ خرچ ہو گیا، وہ تے خرچ ہو گیا۔ میری زندگی دی جیب دے صرف ایک کوئی دم ہے، ایک کوئی دم ہے، نقدی میرے کول ایک کوئی دم ہے، ایک کوئی دم ہے ہر ایک کول۔ پر بندہ کہہ دیندا ہے ایک دم دی کی زندگی ہے، نہیں، ایک دم دے وچ پرماتما مل سکدا ہے، ایک دم دے وچ سارا جہان مل سکدا ہے، ایک دم دچ ساری لوکائی دی پراپتی ہو سکتی ہے، ایک دم دچ پرم رس مل سکتا ہے۔ پر منک اس ایک دم نو کیویں بتیت کرتا ہے؟ اسے ایک دم نو بتیت کر چھڑتا ہے گزرے ہوئے دماں دی یاد دچ،
ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ। ਔਰ ਦਮ ਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਇਗਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਇਗਾਂ ਗੁਯਸਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ, ਬਸ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ, ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਤ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਿਆਂ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਜੈਸੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ 50 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 50 ਹੈ 40 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 40 ਹੈ 30 ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਸਤਰੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਬੁਢੇਪਾ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜੋ ਸੀਖੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੀ ਜਾਨ। ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੀ ਜਾਨ। ਐਸਾ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਟਿਕਦਿਆਂ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੋਲ ਹੈ ਕਬੂਲ, ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ, ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ। ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ।

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

कर्ता पुरुष निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हमें रोग मानक को दीना काम रोग मैं गलवस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581-1900।

0: वैद रोगियां दा। रोग व्यापक है संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। समस्त संसार रोगी है और हैरानगी है रोग नो निवृत्त करण दे साधन आदि काल तो मनुखता लभदी रही है। बहुत कुछ लभे है बहुत कुछ लभे है। आयुर्वेद आचार्य अगे आए तरह तरह दियां जड़ियां बूटियां लेके फिर असी देखदे हां होम्योपैथी अगे आई नेचरपैथी अगे आई एलोपैथी दा बोलबाला होया पर इस सब कुछ दे होंदे होया रोगां दा भी बोलबाला है। इतनी जोर नाल ए औषधियां नहीं बोल रही जितनी जोर दे नाल रोगां दी पीड़ा प्रगट हो रही है रोगां दा रोदन प्रगट हो रहा है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पैने मनुख दी काया रोगां नाल भरी पई है रोगां नाल भरी पई है। ऐसा नहीं है कि रोग मनुख नू चमड़े ने मनुख ही एक रोग है मनुख ही एक समस्या है। अगर मनुख एक रोग है तो गुरबाणी इसका विभाजन कर दिए दो हिस्सों में तन रोग है मन रोग है। तन विच ये जो रोग है अनंत बीमारियां ने मन विच जो रोग है अनंत चिंतावां ने अनंत चिंतावां ते सोग। इंज कह लो तन विच रोग मन विच सोग अनंत चिंतावां दा जो समूह है वो है सोग ते अनंत बीमारियां दा जो इकट्ठ है वो रोग। ये चलदा फिरदा मनुख इंज अंदाजा ला लो रोग चल रहा है सोग चल रहा है। दो मनुख किधरे मिलन रोगां दा मिलाप होया है सोगां दा मिलाप होया और गुफ्तगू विच रोग ही प्रगट होणगे अपनी अपनी समस्यावां ही प्रगट होणगियां। एक दूजे ने अपना सोग दसना है एक दूसरे ने अपना रोग दसना है तो ये तक सच्चाई हो गई रोग ही रोग नाल मिले है सोग ही सोग नाल मिले है। देखण नूं तां इंज दिखाई देगा मित्र मित्र नाल मिले है पर गुरबाणी की रोशनी च देखो नहीं रोग दा ही रोग नाल मिलन होया है। देखण नूं तां इंज पति पति दा मिलन होया है पर कौन दसे एक चिंता दूसरी चिंता नाल जा मिली है एक रोग दूसरे रोग दे बगलगीर होया है। किन्ने ने हस्पताल दे अंदर दाखिल मरीज मरीजां दी मरीजां नाल दोस्ती हो जाती है रोगियां दी रोगियां नाल दोस्ती हो जाती है जेल दे अंदर कैदियां दी कैदियां नाल दोस्ती हो जाती है। सुतंत्र बंदियां नाल दोस्ती कर सकन ऐसा माहौल ही उपलब्ध नहीं है ऐसा माहौल ही उन्हां दे सामने नहीं है। तो कैदियां दी दोस्ती कैदियां नाल हो जाती है रोगियां दी दोस्ती रोगियां दे नाल हो जाती है। ते जे मनुख दी खास अंतिशकरण विच जात मार के देखिए रोगां दे भंडार तो बिना होर है कि एक रोग ही दूसरे रोग नूं मिल रहा है एक चिंता ही दूसरी चिंता नूं मिल रही है। कोई पुत्र ते पिता दा मिलाप नहीं दो समस्यावां दा मिलाप हो रहा है। प्यो ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने पुत्र ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां। कोई भैण भरा दा मिलन नहीं भैण ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने भरा ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने। अगर गहराई च देखो कोई पति ते पत्नी दा मिलन नहीं एक दूजे दे रोगां दा मिलन हो रहा है एक दूजे दियां समस्यावां दा मिलन हो रहा है। और कितनी ए बदकिस्मत दुनिया है कि दो रोगां दे मिलाप दे खुशी जाहिर की जाए दो चिंतावां दे मिलाप नू मिलनी आख्या जाए दो मुसीबतां दे दो कल कलेश दे मिलाप नू खुशी दा अखाड़ा बनाया जाए ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੀਮਤੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਉਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੀਤਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੀਪ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਚਾਨਣ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਝ ਚੁਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ, ਦਿਲ ਜਲਾਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਅੰਧੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਖਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ, ਦਿਲ ਜਲਾਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਪਕ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਦੀਪਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਰਹਾਓ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਰਹਾਓ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਠਹਿਰਾਓ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਅਨੁਵਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਅਨੁਵਾਨ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਰਹਾਓ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰਹਾਓ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਪਕ, ਪਰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਵੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਓ, ए तेल दीवा तों जले कर चानन साहिब तौ मिले। ए तेल है ए वट है और तुम इस तरह चानन कर। हजारा पदार्थ जो पए ने घर विच बेशुमार चीजा जो पईया ने सब दिखाई देन लग पैंदिया ने। दीवा बुझे होया हजारा च एक भी नहीं दिखाई देंदी। इस वास्ते एक सच्चाई है अंधेरे तो बड़ा कोई पर्दा नहीं है बहुत बड़ा पर्दा है। उच्चे उच्चे पहाड़ अंधेरा ढक देंदा है नहीं दिखाई देंदे। वनस्पति बड़े बड़े जंगल बाग बगीचे सबनो अंधेरा ढक देंदा है। उच्चिया उच्चिया बिल्डिंगा ए महल ए मुनारे अंधेरा सबनो ढक देंदा है। अंधेरे च शहर नहीं दिखाई देंदा अंधेरे च जंगल नहीं दिखाई देंदे अंधेरे च बाग बगीचे नहीं दिखाई देंदे अंधेरे विच ओ पहाड़ नहीं दिखाई देंदे जिन्हां दियां चोटियां आसमान नूं बोसा दे रही नहीं दिखाई देंदे। अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है कोई पर्दा नहीं है और रोशनी तो वड्डी कोई बेपर्दगी नहीं है। प्रकाश सब कुछ नु मनजर आम दे कर देंदा है। ए पहाड़ ने ए शहर ने ए वनस्पति है ए बाग है ए जंगल ने ए मनुख ने। अंधेरा हो जाए और एक घर विच कोई 50-60 फर्द बैठे होन हुण अंधेरे च नहीं दिखाई देगी भैण कौन है ते पत्नी कौन है मां कौन है ते पिता कौन है। अंधेरा ऐसा है दूजे नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा अंधेरे च अंधेरा ही दिखाई देंदा है और कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। जद अंधेरा आउंदा है अंधकार दूसरे दी होंद नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा। अंधेरा कहिंदा है बस मैं अंधेरे दे सामने हजारां चीजां छुप के रह गईयां। सब तो भयंकर रोग है अंधकार और अंधकार है अहंकार। अहंकार दे सामने ते निरंकार भी ओले हो जांदा नहीं दिखाई देंदा नहीं दिखाई देंदा। बड़ा प्रबल अंधकार। भारत ने बहुत प्राचीन काल तो महसूस किया है मनुख दी जिंदगी विच इक्को ही त्योहार हो सकता है और नहीं बाकी सब वक्ती ने। इक्को ही त्योहार महान है केड़ा दिवाली दिवाली चानना रोशनी। और मनुख दी जिंदगी विच इक्को ही बदकिस्मती है कि अमावस मस्या अंधेरा। दिवाली मस्या दी रात नूं आउंदी है। पूर्णमासी दा चंद्रमा खिड़िया होया दीवे जलाने दी लोड़ ही की है। दीवियां दी महानता अमावस दी रात जो है बनती है। मनुख अमावस है अमावस सज सकती है अमावस भी शिंगारमयी हो सकती है अमावस भी दुल्हन बन सकती है बशर्ते प्रकाश दा राजा आ जाए प्रकाश दा दुल्हा आ जाए। तो ये अमावस भी शिंगारमयी हो सकती है प्रकाशमयी हो सकती है सजी हुई दुल्हन हो सकती है। बाहर से मनुख ने ऐसा यतन किया है अमावस नूं हजारां दीवे जला के रोशनी करन विच ये सफल हो गया। सब तो वड्डा त्योहार हो गया दिवाली। पर जीवन जो स्वयं मसिया विच है जमिया मसिया विच जीविया मसिया विच मरिया भी मसिया विच। पता नहीं कितनिया दिवालियां भी मनुख व्यर्थ कर चुके हैं। कुछ नहीं प्रेरणा ली कुछ भी नहीं प्रेरणा ली। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐ मनुख है ते तू दीवा पर करिए कि बुझे होया है। ते बुझे होया क्यों है इतने जल्दे दीवे ने। कृष्ण दा दीपक एक दीपक दा नां कृष्ण एक दीपक दा नां राम एक दीपक दा नां गुरु नानक एक दीपक दा नां मोहम्मद साहब एक दीपक दा नां ईसा एक दीपक महात्मा बुद्ध, एक दीपक दीपक ने स्वामी महावीर, पता नहीं कितने दीपक कितने दीपक। और एक आम कहावत है कि दीवे नाल दीवा जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, जलदा या दीपक ही बुझे दीपक नु जलंदा है। पर जलदे दीवे सारे नाकारा साबित हो जाते ने जब दीवे च तेल ही ना होवे ते वट ना होवे की करनगे। जलांदे रहने ना बुझे हुए दीवियां नू ए अवतारी पुरुष, उना दी रोशनी इना नू रोशन नहीं कर सकी क्योंकि दीवियां च तेल नहीं सी, वट नहीं सी। हर अवतार किसे हद तक नाकाम होके जगत तो गया है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। मनुख दे अंदर जड़ी दुष्टपना बिरतियां ने इना सारियां दी मैं जड़ा पुटनियां ने, सारा अंधकार नाश करना। कवि तुलसी भी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा अरे कृपा निद सज्जन पीरा। जद जद अधर्म दी हानि आउंदी है, कोई महान धर्म दा दीपक आ जांदा है इना बुझे होया दीवियां नू जलाण वास्ते, पर धर्म दी हानि ते हो रही है और रोज रोज ए हान वद्दा जा रहा है, लाभ ते कोई नहीं नहीं है। ठीक है, तुलसी दी शरदा ऐसा दसम ग्रंथ दे च भी है, जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब देहे धरत अवतारा, जद घोर मसिया दी रात हो जाए आउंदे ने अवतार। पूर्णमासी दा चंद्रमा बन के आउंदे ने, पर कीता की जाए जिंदगी दी अमावस जिस नाल मनुख सहमत हो गया, अंधेरे दे जीवना जिसले जन्म दिन बन जाए, अंधेरे ले जीवना जिसले नचना ते टपना बन जाए, ऐसा बुझया होया दीवा फिर फिकर नहीं कर सकदा मेरे विच तेल नहीं है वट नहीं है। ऐसे दीवियां ने कई दफा इना जलदे दीवियां ते इल्जाम लाया है। मैं देख के हैरान हां, एक दीवे नू ते कह दिता कि घर देच क्यों जल रहा है, ये 14 साल बनवास निकले जंगल देच। एक दीवा ते जेल दी तंग तारीख कोठड़ी देच जले है। श्री कृष्ण दा जन्म जेल दी तंग तारीख कोठड़ी देच होया। एक जलदे चिराग नू बाबर ने अपनी जेल विच पा दिता, एक जलदे हुए दीवे नू प्रकाशमयी दीपक नू वक्त दी हकूमत ने तत्ती तवी ते बिठा दिता, एक जलदे हुए चिराग नू चांदनी चौंक विच फूका मार के बुझाण दी कोशिश कीती गई। बुझाओ बुझाओ, पर कौन दसे ए दीवे ओ ने, ए दीपक ओ ने जिस दिच तेल स्वयं परमात्मा बने आया है, जिस दिच वट स्वयं ईश्वर बने आया है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो किस तरह बुझेगी, वो किवें बुझेगा, लेकिन इतना ते कहा जा सकता है वो किवें जल सकेगा जिथे तेल नहीं है वट नहीं है। जलदा होया दीपक ते नहीं बुझेगा, पर बुझे होया दीपक नहीं जल सकेगा अगर तेल नहीं है वट नहीं है, तो तेल की हो सकता है, वो वट की है बाती की है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज पावन पवित्र वाक विच इंज फरमान करदे ने, पोथी पुराण कमाइए भव वटी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा इउं जले कर चानण साहिब तौ मिले। जितने जगत दे धार्मिक ग्रंथ ने गल मन ले, ए मुसलमान कुरान दी गल मन ले, घर विच कुरान है पर मुसलमान कुरान तो बिना जी रहे। घर घर विच गीता दियां पोथियां हो सकदियां ने, गीता का पाठ हो सकता है पर हिंदू गीता तो बिना जी रहे है। गुरबाणी होंदे होया सिख गुरबाणी तो बिना जी रहा है। इसका व्यवहार दसदा है, इसका आचार दसदा है। इसके व्यवहार दते गुरबाणी की मोर नहीं है, इसके आचार दते गुरबाणी तस्दीक नहीं करते। इतना ईसाई जगत पर बाइबल तो बिना जी रहा है। इतना महान ये बोध जगत पर धम पद्दो बिना जी रहा है। ये जैन महावीर दे समय सार तो बिना जी रहे हैं। इतने चिराग ये रोशनी तो बिना क्यों जी रहे हैं? वट नहीं है, तेल नहीं है। धर्म ग्रंथ जो कहंदे ने इन्हां नूं मन्ना मन्ना, एक एक अखर नूं खिड़े मथे मन लेना। मन्नेगा मनुख ताई जे कम से कम इतना ओ समझे कि मैथों ए अग्गे, मैथों ए अग्गे। अगर कृष्ण मेरे तो पिछे खड़े ने तो मैनू उना दी कोई गल सुनन दी लोड़ नहीं, उना तो ते मैं ही अग्गे खड़ा। जे गुरु नानक मैथों पिछे ही ने, मेरे अग्गे नहीं ने, तो मैं क्यों उना दी गल मना, क्यों उना दी गल मना। मैं देखदा हां मनुख ने राजनैतिकां नूं भी अग्गे रखिया, उना दी गल भी मन लैंदे ने। मनुख ने परिवार नूं भी अग्गे रखिया है, पत्नी दी गल भी मन लैंदे ने, और पत्नी पति दी गल मन लैंदी है, भरा भरा दी गल मन लैंदा है। इंज कह लो मनुख ने परिवार अग्गे रखिया है, राजनैतिक लोगां नूं भी अग्गे रखिया है। मनुख दी जीवन भर दी चेष्टा ते यही है, हर अवतार नूं अपने पिछे ही खड़ा करो। जिस जिस पासे असी चल रहे हैं उस पासे चलन। जबकि अवतार कहंदे ने जिस पासे असी चल रहे हैं उधर चलो। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। अगर अवतार मनुख दे पिछे चलन लग पे तो फिर अवतार अवतार नहीं है। अगर मनुख मनुख दे पिछे चलन लग पे तो मनुख मनुख नहीं है, तो देवता है, इत फरिश्ता है, इत महान हो गया। लेकिन देखन दे चाया है पत्नी पति दे पिछे चल सकता है, पति पत्नी दे पिछे चल सकती है, भरा भरा दे पिछे चल सकता है, संसार राजनैतिक दे पिछे चल सकता है, मनुख अवतार दे पिछे नहीं चल सकता। जबकि अवतारां दी कोशिश है साड़ी आवाज दी सेध, चले आओ चले आओ, पहुंच जाओगे घर तक। तो साहब कहंदे ने धर्म ग्रंथां नूं मन लेना, ते मन के उनां नूं हिरदे विच धारण करके उनां दा पाठ पठन रोजमर्रा करना, ए तेल पाना है दीवे विच। भव वट्टी इत तन लाई है, भावना दी वट प्यार दी बाती ला। जिसनूं रोज रोज याद करिए पाठ दे राही बाणी दे राही, आखिर याद एक दिन ते प्यार बनेंगे बनेंगे। याद ही प्यार बनती है। इस दिते मैं उदाहरण देना हुना, जैसे खादा होया भोजन एक दिन खून बनता है, बार बार कीती हुई याद एक दिन प्यार बन जाती है, प्यार बन जाती है। रोज रोज दा पाठ, रोज रोज दी ये धर्म ग्रंथां दी कमाई, एक दिन प्यार बन जाती है। तो पाठ करना धर्म ग्रंथां दी इस रचना नु, इस बाणी नु मनना ते जप करना, ए तेल पाना है। पढ़ना ते जपन विच थोड़ा जिहा अंतर है। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनू याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू इस दे अर्थ बोध आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ए बोल है। पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावां, इस बाणी दा रूप हो जावां। जपन लगया बाणी दा वाक दा कंठ होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उत्थे जपना उसनू कहंदे ने कि जबान उचारण करे ते फिर मन सुने। ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਵਾਈਏ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਮਿਲੇ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਾਤੀ ਪਾਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਾਤੀ ਪਾਏਗਾ, ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪਠਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਵਪਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਵਪਨ ਡੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਿਅੰਕਰ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸੇ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲਗੇ ਨਾ ਵੇਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਿਤਨੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੋਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਰਨ, ਔਸ਼ਧੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਚ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਚ ਦੂਸਰਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਵੰਨੇ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ। ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਾਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ, ਫਰਨਡੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
2: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
3: ਹਾਂਜੀ,
2: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
3: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਬੈਂਗਣ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਗੋਭੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀ, ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ।

0: तेजे सब्जी भले खाना है,
1: फ्रूटी कहना जाना है,
0: फ्रूटी कहना जाना है,
2: फ्रूटी कहना ही जाना।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: सी भल खाना है फ्रूटी क्या नहीं जाना है फ्रूटी क्या नहीं जाना है फ्रूटी क्या नहीं जाना
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
3: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਵਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ